ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 15 जून सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस्लामिक गणराज्य ईरान के साथ समझौता संपन्न हो गया है। ट्रंप ने रविवार को सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से ये घोषणा की। उन्होंने लिखा, मैं होर्मुज जलडमरू मध्य को बिना किसी शुल्क के खोलने की पूर्ण अनुमति देता हूं और साथ ही साथ अमरीकी नौसैनिक घेराबंदी को तत्काल हटाने की भी अनुमति देता हूं। विश्व के सभी जहाज अपने इंजन चालू करो, तेल की आवाजाही बहाल करो। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमरीका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। शरीफ ने सोमवार तड़के सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, हमें ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अमरीका और इस्लामिक गणराज्य ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। उन्होंने आगे कहा, दोनों पक्षों ने लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य अभियानों को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने की घोषणा की है। आधिकारिक हस्ताक्षर कार्यक्रम शुक्रवार 19 जून को स्विट्जरलैंड में होगा। ईरान के विदेश उपमंत्री ने कहा है कि समझौता ज्ञापन के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है और शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। काज़िम गरीबाबादी ने सोमवार को सरकारी मीडिया के माध्यम से एक वक्तव्य जारी कर दावा किया कि ईरान ने युद्ध में बड़ी जीत हासिल की है। गरीबाबादी ने कहा कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध की तत्काल और स्थायी समाप्ति के साथ साथ ईरान के खिलाफ अमरीकी नौसैनिक घेराबंदी को तुरंत हटा लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ज्ञापन के शेष प्रावधान शुक्रवार को आधिकारिक हस्ताक्षर के बाद प्रभावी हो जाएंगे। उन्होंने जोड़ा कि ईरान के परमाणु विकास कार्यक्रम और उस पर लगे अमरीकी प्रतिबंधों को हटाने के संबंध में दूसरे चरण यानी 60 दिनों के भीतर चर्चा की जाएगी। विदेश उपमंत्री ने चेतावनी दी कि ईरान के सशस्त्र बलों की उंगली हमेशा ट्रिगर पर रहेगी। जापान के प्रधानमंत्री ताकाइची सनाए ने अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन की घोषणा का स्वागत किया है। ताकाइची ने सोमवार सुबह सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये घोषणा संबंधित देशों द्वारा राजनयिक समाधान की तलाश और लगातार बातचीत का परिणाम है। उन्होंने मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे देशों के प्रयासों की सराहना की। ताकाइची ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि समझौता ज्ञापन को उचित रूप से लागू करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य में मुक्त एवं सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और अन्य मुद्दों पर जल्द से जल्द अंतिम समझौते की प्रबल आशा भी व्यक्त की।

ये समाचार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान और ब्रिटेन के नेताओं ने अहम खनिजों सहित आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। जापान की प्रधानमंत्री ताकायची सानाई ने रविवार को लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से मुलाकात की। बैठक की शुरुआत में ताकायची ने कहा कि जापान और ब्रिटेन सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में सहयोग को प्रगाढ़ बना रहे हैं, जो एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया है जिसे अर्ध सहयोगी के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। बाद में दोनों प्रधानमंत्रियों ने आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। इस दस्तावेज में नेताओं ने अहम खनिजों सहित विभिन्न वस्तुओं के निर्यात पर लगाए जा रहे मनमाने प्रतिबंधों और आर्थिक दबाव के संबंध में गंभीर चिंता व्यक्त की है। इसमें कहा गया है कि दोनों नेता अहम खनिजों के खनन, शोधन, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण और भंडारण जैसे क्षेत्रों में G7 सदस्यों और समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग को बढ़ाएंगे। घोषणा पत्र के अनुसार दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच विशेष रूप से ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं पर दबाव के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रति बढ़े हुए जोखिमों को पहचाना है। इस मुद्दे के संबंध में घोषणा पत्र में उत्पादक और उपभोक्ता देशों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के महत्व की पुष्टि की गई है। इसमें अपतटीय पवन ऊर्जा उत्पादन पर सहयोग बढ़ाने की योजनाओं का भी उल्लेख किया गया है। ताकायची और स्टार्मर इस बात पर भी सहमत हुए कि अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के विकास के लिए वे जापान, ब्रिटेन और इटली के बीच एक संयुक्त कार्यक्रम को गति देंगे। पूर्वी फ्रांस के एवियन में सोमवार को G7 शिखर सम्मेलन का शुभारंभ होने वाला है। बैठक के एजेंडे में ईरान और यूक्रेन जैसे मुद्दे शामिल होने की उम्मीद है। कतर और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई देशों के नेता संभवतः G7 प्रतिभागियों के साथ ईरान से संबंधित स्थिति पर चर्चा में शामिल होंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के भी G7 नेताओं के साथ वार्ता में शामिल होने की संभावना है, जहां यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के संबंध में चर्चा होगी। यूक्रेन से संबंधित विषयों में शांति वार्ता को समर्थन देने के तरीके भी शामिल होने की संभावना है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों चाहते हैं कि शिखर सम्मेलन में आर्थिक विषमता कम करने और वैश्विक आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी जाए। वे आर्थिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी प्रकाश डालना चाहते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाना शामिल है। नेताओं से उम्मीद की जा रही है कि वे पिछले साल की तरह व्यापक संयुक्त वक्तव्य जारी करने से बचेंगे। इसके बजाय अलग अलग मुद्दों के निष्कर्ष जारी किए जाने की संभावना है। अमरीका और यूरोपीय देशों के बीच संबंध आंशिक रूप से इसलिए खराब हैं क्योंकि यूरोपीय देशों ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज़ों को भेजने के प्रति सतर्क रुख अपनाया था। गौरतलब है कि अमेरिका बहुपक्षीय सहयोग की बजाय अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति को बढ़ावा दे रहा है, जबकि उभरती अर्थव्यवस्थाओं के उदय के बीच G7 की उपस्थिति में गिरावट आ रही है। पुरुष फुटबॉल विश्व कप में रविवार को जापान ने अपना पहला मैच खेला। नीदरलैंड्स के खिलाफ खेला गया ये मैच 2-2 के साथ ड्रॉ रहा। विश्व में 18वीं रैंकिंग वाले जापान और 8वीं रैंकिंग वाले नीदरलैंड्स का मुकाबला अमेरिका के दक्षिणी राज्य टेक्सास के डलास स्टेडियम में हुआ। नीदरलैंड्स ने लगभग 50वें मिनट में पहला गोल दागा, जिसके 6 मिनट बाद जापान के नाकामुरा केइतो ने गोल दागकर मुकाबले को बराबरी पर ला दिया। करीब 64वें मिनट पर नीदरलैंड्स ने दूसरा गोल किया। खेल समाप्ति की घड़ी नज़दीक आने के साथ ही लगभग 89वें मिनट पर जापान के ओगावा कोकी ने कॉर्नर किक से आ रही गेंद को अपने सिर से नेट की ओर दिशा दी, जो कामादा दाइची के सिर से टकराते हुए नेट में चली गई और स्कोर एक बार फिर बराबरी पर आ गया। इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।